0: 106.1 FM. This is us. The vibe and energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: लड़के वाले आज आ रहे हैं और हम लड़कियां दिखाएंगे कि हम किसी से भी कम नहीं है. Music.